जाम कि धुमधाम राइट सपन नया इवी मेरो टियागो इवी फ्रम द लाइट्स अफ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun, go.

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।